0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जा

0: जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Raj Bhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. The two-day conference will bring together scholars, educationists, members of parliament, senior government officials and distinguished personalities from various fields to deliberate on the development of Hindi as the official language, people's language and link language, besides its coordination with other Indian languages. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion.

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दशदिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। ऋतु विज्ञान विभागानुसारम् अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े, पंजाबे, पूर्व राजस्थाने, असमे, अरुणाचल प्रदेशे च अतिवृष्टिः संभाव्यते। गतरात्रौ दुबई नगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रति-20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 270 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का नई दिल्ली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों का दर्शाने वाला वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। यमन की सेना ने लाल सागर के तट के पास ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर एक भी गोली

0: 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।

0: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कैनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
3: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st Century स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st Century स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
2: तो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
3: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आस पास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आस पास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
2: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं?
3: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि

0: किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है। तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी, गौरैया। तो जब मैं नानी के घर जाता था बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा ओके क्या कारण है कि वो खत्म हो गई। तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम रेडिएशन। तो आई सेड आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले नहीं मैम सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देयर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई हमें गौरैया के लिए नेस्ट साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए। 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 years कंटिन्यूअस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है, एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर।
1: सो बहुत ही, मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलेबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 lakh rupees फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 lakh rupees से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूअसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd time नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग

0: रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए। और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम, तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी। और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए, जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले। तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से, तो ये दिखना नहीं चाहिए। कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है। इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इम्पोर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
0: आई वुड लाइक टू एड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गौरैया जो है मैम, ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं।
1: वेरी,
0: क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
0: यस यस ऑफ कोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
0: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ

0: मेरे बच्चों को मैं बायोडायवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ हैं, बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं, यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए। तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं। कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना, आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते? 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए, फिर बना लोगे? तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे लाइक हां कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा। इवन आई वाज ब्लैंक कि कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था, लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो। इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला, पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था, और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को। तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शंस के मिले।
1: बच्चों में बहुत उत्साह था।
0: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया, जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था, और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं। तो हमने उसमें विधि लिखी, अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये आता है, यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
1: So कोई भी जो विजिटर है, जो भी वहां से गुजर रहा है, स्कैन करिए और आपको
0: यस, यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहाँ कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट, तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आवर एरिया। तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स, तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम, और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया, और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या हैं, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला मैम, बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं, और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब ये? सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड

0: है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं, क्या हम वहाँ उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप क्यू आर कोड या पीबीएल का इम्पैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट क्या है, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ क्यू आर कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि क्यू आर कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सके कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वर स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो he said कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड देन ही वाज लाइक कि मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है। तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement, ma'am.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, जैसा आप कह रही हैं कि वो रिसर्च जो स्टेज है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे डायनामिक चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, उसको एक सक्सेस तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो माइंड सेट है फॉर लाइफ, ता उम्र के लिए वो एक जो कॉन्जर्वेशन है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं गांव में, जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ये ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है मैम।
1: बिल्कुल जरूरी है, हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है

0: बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
1: मैम, इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस तरह यहाँ से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे। और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन्स रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
0: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
1: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती है, उनमें भावनाएं होती है, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसी सूरज की रोशनी मिल रही थी और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, 1 महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
0: तो बहुत ही कहेंगे दूरगामी इसके प्रभाव है और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है एंड बच्चों के लिए भी उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
1: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
0: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

सुनने वाले सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पे ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ, और एक खास वजह है कि इस गीत को हम बजा रहे हैं। तो सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कोई खास वजह है कि आज मैंने इस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। जी हाँ, आज 14 सितंबर है और आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारा पहचान है। संस्कृत की बेटी होने के कारण हिंदी में वैज्ञानिकता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ये देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर कोहिमा से कच्छ तक, कोई भी व्यक्ति यदि एक भाषा से काम चला सकता है तो वो है हिंदी। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद से लेकर आज के डिजिटल युग तक हिंदी ने कभी अपना रूप नहीं खोया, बस नया रूप धारण किया है। हमने हिंदी को मातृभाषा तो माना, पर काम की भाषा अंग्रेजी को बना दिया। हम हिंदी में सोचते हैं, सपने हिंदी में देखते हैं, पर नौकरी के इंटरव्यू में अंग्रेजी में लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा खतरा वो है कि कभी कभी अंग्रेजी भाषा से हीन भावना की उत्पत्ति होती है, जो कि हिंदी से नहीं होती ही। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि आज हिंदी कमजोर नहीं बल्कि सबसे बड़ा औजार है और इसका सबसे बड़ा बाजार है। संवाद से रोजगार तक ये भाषा हर इंसान को, हर वर्ग को छूती है, स्पर्श करती है। कोई भी आप सोशल मीडिया ले लें, OTT प्लेटफॉर्म्स ले लें, किताबें, पॉडकास्ट, विज्ञापन, सब जगह कंटेंट जो है हिंदी क्रिएटर, हिंदी लेखक, हिंदी अनुवादक, हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की मांग अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ास करके हिंदुस्तान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब हिंदी सीख रहा है, यानी हिंदी अब सिर्फ दिल की ही नहीं बल्कि रोजी रोटी की भी भाषा बन गई है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास

0: और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: कदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि।
3: गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे के भव्य और ऐतिहासिक गणेशोत्सव का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य 5 गणपति सहित विभिन्न गणेश मंडलों की आकर्षक सजावट, ढोल ताशों की गूंज और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगले 10 दिन तक पुणे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल रहेगा। इस वर्ष कई गणेश मंडलों की ओर से सामाजिक संदेश और जन जागरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का नियोजन किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
2: गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि।
1: क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, স্থানীয় সংবাদ পড়ছি। সুদীপ বসু। 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ শাসিত 21টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন। গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইউসিসি চালু হয়েছে, শীঘ্রই বাকি রাজ্যগুলিতেও তা করা হবে।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির

शुक्र है जवाब आया तो सही, वरना लोग इंतज़ार में उम्र गुजारते हैं। वक्त हो चला है आज उन मौजूआत पर बातें करने का जिन्हें आज के आईने के लिए हमने मौजू बनाया है, हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी। जी हाँ, कहते हैं कि संस्कृत से जन्म हुआ उर्दू की ये प्यारी है, संस्कृत से जन्म हुआ उर्दू की ये प्यारी है, सभी जबानों में देखो हिंदी सबसे प्यारी है। दोस्तों, आज हम इस प्यारी ज़बान हिंदी की बातें कर रहे हैं। 14 सितंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है ताकि इस ज़बान को सरकारी और कौमी सतह पर फ़रोग दिया जा सके। जहां तक इस ज़बान की तारीखी पस मंज़र का ताल्लुक है तो 14 सितंबर 1949 के इस तारीखी फ़ैसले की याद में मनाया जाता है, जब दस्तूर साज असम्बली ने हिंदी को देवनागरी रस्मुलख़त में भारत की राजभाषा के तौर पर कबूल किया था। हिंदी ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग देने, सरकारी तालीम और समाजी ज़िंदगी में हिंदी के अहमियत को उजागर करने, साथ ही कौमी यकजहती और लसानी शनाख्त को मुस्तहकम करने के लिए भी इस दिन को ख़ास तौर पर मनाया जाता है। 1953 से इस दिन को मुसलसल मनाया जाने लगा है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, दफातर और सरकारी अदारों में तकरीरी मुकाबले, मज़मून नवीसी, क्विज़ और हिंदी हफ्ता जैसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। जहाँ तक इस ज़बान की अहमियत का ताल्लुक है तो ये भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है, जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी किया करती है। इस ज़बान को फ़रोग देना हर शहरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। कहते हैं कि देश की ये शान है, देश की ये शान है, हर हिंदुस्तानी की पहचान है, मीठी इसकी वाणी है, ये सच्ची प्रेम कहानी है। दोस्तों, सच्ची प्रेम कहानी के जिक्र से कुछ और आगे बढ़ते हैं। मौजूद सामिन, आज गणेश चतुर्थी भी है, हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार जो गणेश देवता की सालगिरह की याद में बड़े एहतराम के साथ मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, जो 10 दिनों तक जारी रहता है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो मौजूद सामिन, ये था आईना, जिसमें आज दो मुनफरद मौजू पर हमने बातें की। और अब वक्त हो चला है एक खूबसूरत नगमे का। इससे पहले बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:20:21 हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म दिल तो पागल है। नगमा निगार आनंद बख्शी और मौसीकार हैं उत्तम सिंह।

हाँ हाँ, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, और इसी पागलपन और जुनून के साथ वो एक उम्र गुजार लेता है। यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह के हालात पैदा होंगे, हुए होंगे। ज़रा याद तो करें, जवाब खुद ही मिल जाएगा। कहते हैं कि उनका ही तसव्वुर है महफिल हो के तन्हाई, उनका ही तसव्वुर है महफिल

हो के तन्हाई, समझे कोई दीवाना, जाने कोई हर जाई। बोल आनंद बख्शी के, मौसीकार जतिन ललित, आवाज़ें लता मंगेशकर और कुमार सानू की, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: दोस्तों दिल भी उस बच्चे की मानिंद है जो हर चीज़ को देखकर मचल जाता है और ज़िद करता है, बस यही चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं, हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं। मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं, दर्द से रिश्ता है मेरा खुशियाँ मुझे नसीब नहीं, दर्द से रिश्ता है मेरा खुशियाँ मुझे नसीब नहीं। मुझे भी कोई याद करे इतना भी खुश नसीब नहीं। पर दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता है, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है मंजरनामे का। स्टूडियो की घड़ी में 10:32:46 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन, और अंजुमन में आपके साथ मैं हूं सरफराज। और अब पेश है मंजरनामा। मौजूदा आज 14 सितंबर है, मुल्क भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइनसाज असेंबली ने देवनागरी रस्मुलखत में लिखी जाने वाली हिंदी ज़बान को मुल्क की कौमी ज़बान के तौर पर, राजभाषा के तौर पर इसे तस्लीम किया। आज हिंदी ज़बान न सिर्फ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है, बल्कि ये 520 मिलियन से ज़ायद लोगों की पहली ज़बान बन गई है। क्या है इसकी अहमियत, क्यों ये लोगों की पहली ज़बान बन गई है, इस सिलसिले में आज हम आकाशवाणी कोलकाता की जानिब से ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मोहतरमा महमूदा खानम इस ख़ास प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस बातचीत में आपका साथ दे रही हैं शाइस्ता नाज।
1: भाषा सिर्फ ख्याल जाहिर करने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे जज्बात और हमारी पहचान की आईना भी होती हैं। भाषा के जरिए हम अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपने गुजरे हुए कल से जोड़ते हैं और आने वाली नस्लों तक अपने इल्म और अपने तजुर्बात को उन तक पहुंचाते हैं। आज का दिन एक ऐसी ही खूबसूरत भाषा हिंदी के नाम है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज 14 सितंबर है और हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें हिंदी भाषा की अहमियत, उसकी तरक्की और उसके वसी अदबी और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। हिंदी एक ऐसी जबान है जिसने हिंदुस्तान की गंगा जमनी विरासत, लोक रिवायात, अदब, सहाफत, सिनेमा और रोजमर्रा जिंदगी में अपनी हैसियत बनाई है, अपना मुकाम हासिल किया है। इसकी खूबसूरती ये भी है कि ये दूसरी हिंदुस्तानी भाषाओं से अल्फाज और लफ्जों को लेकर मजीद मालामाल होती रही हैं। इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जबान हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, हिंदी भाषा का सफर कैसा रहा है और बदलते हुए दौर में हिंदी के सामने क्या क्या मौके और चैलेंजेस आए हैं। तो आइए हिंदी दिवस के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत पुल भी है। तो हमारे साथ आज मौजूद है हमारी एक खास मेहमान जो खिदरपुर कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर महमूदा खानम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आकाशवाणी में आई हैं और आज आकाशवाणी आपका खैर मकदम करता है, आपका स्वागत करता है।
2: धन्यवाद साइस्ता, और आकाशवाणी का विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं आई, और हमारे सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आज की बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है।
2: 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का अधिकार दिया गया था और हिंदी राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा ने इसकी सिफारिश की थी, जब से 1953 से जो है हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है सभी कॉलेजेस, स्कूलों में और जितने भी बैंक है या सरकारी कार्यालय है वहाँ पे हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये सिर्फ भाषा को जो है सम्मान देने की बात नहीं है, बल्कि अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी

0: की आवश्यकता जरूरी है।
1: जी जी, भाषा किसी मुल्क और समाज की संस्कृति और परंपराओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकती है, किस तरह से इसकी हिफाजत की जा सकती है?
0: भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बिना भाषा के कोई भी समाज नहीं होता है। अगर किसी समाज की अपनी भाषा नहीं होगी तो वो समाज जो है लुप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, एक सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, एक संस्कृति को बचाने के लिए भी भाषा आवश्यक है। जैसे लोक कथाएं, लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होती है, वो भाषा के माध्यम से ही होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो लोकगीत गा रहा है या लोक कथाओं के बारे में जिसको ज्ञान है वो पढ़े ही, वो उसमें जो है सुनकर एक श्रोता के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो किसी भी समाज की संस्कृति को बचाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि भाषा बहुत जरूरी है और इसकी हिफाजत भी जरूरी है और हमें इसे आगे बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ और समय के साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं?
0: हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से होती हुई पाली, प्राकृत और अभ्रंश, इसके बाद अभ्रंश को जो है हमारे एक कवि हैं विद्यापति, उन्होंने इसे देशी भाषा कहकर संबोधित किया और वहां से जो है हमारी खड़ी बोली शौर सैनी अभ्रंश से विकसित हुई है। और आज हिंदी की स्थिति यह है कि आप देखते ही हैं, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, रंगमंच, सब जगह पे जो है हिंदी बोली जाती है। और हिंदी का जो प्रसार है वो केवल देश तक सीमित नहीं है, वो विदेशों में एक संपर्क भाषा के रूप में भी पढ़ी पढ़ाई जा रही है, बोली जा रही है। और जहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर जो है विदेशों में हिंदी की रुचि, हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है।
1: हिंदी किताबों तक महदूद नहीं है बल्कि हिंदी को आम लोगों तक पहुँचाने में रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा ने क्या रोल अदा किया है?
0: रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का एक ऐतिहासिक महत्व है। कारण ये है कि रेडियो सबसे, इसकी जो बड़ी खासियत है वो ये है, जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता है वो भी सुन सकता है। तो रेडियो ने जो है वो घर घर तक, ये कह सकते हैं कि गांव गांव तक जो है हिंदी को पहुंचाया है। क्योंकि जहां पे कोई व्यवस्था नहीं है वहां भी देखेंगे कि खेत में लोग जो है रेडियो लेकर चले जाते हैं और उसे सुनते रहते हैं। तो ये हिंदी को वहां तक पहुंचाने का काम जो है रेडियो ने किया है। दूसरी बात जो है वो टेलीविजन, जब हम टेलीविजन की बात करते हैं तो चूंकि ये दृश्य माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है, तो इससे भी जो है लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जिस चीज को वो सुन पा रहे हैं उसे वो आंखों से देख रहे हैं। और सिनेमा ने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो ये कि सिनेमा सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, उसने हिंदी को विदेशों तक जोड़ दिया है। यानी जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं वो भी सिनेमा देखते हैं और उसके गाने सुनते हैं और उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुनगुनाते हैं। तो ये सिनेमा का जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो हिंदी को देश से विदेश तक जोड़ती है।
1: यानी मीडियम, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया हिंदी को बेहतरीन बनाने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: ये बात तो है। अब ये सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे कि आज की युवा पीढ़ी हिंदी से किस तरह से जुड़ी हुई है, क्या सोशल मीडिया ने हिंदी को एक नया मंच दिया है?
0: आज की युवा पीढ़ी हिंदी से जुड़ी हुई है और बहुत हद तक जुड़ी हुई है, इसलिए कि सोशल मीडिया ने हिंदी में, आप देखते हैं रील्स, पॉडकास्ट, हिंदी बोली जा रही है, वहाँ पे जो है इंटरव्यूज वगैरह लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर जो रंगमंच सोशल मीडिया ने, या जो मंच जो है सोशल मीडिया ने दिया है, वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी भी है। जहाँ पे उसकी अपनी दूसरी भाषाओं के शब्द का प्रयोग है वो भी करते हैं, लेकिन उनके जो मूल विचार है वो कहीं ना कहीं हिंदी में आ रहे हैं।
1: एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदी और उर्दू को अक्सर एक दूसरे से बहुत करीब माना जाता है, आप हिंदी उर्दू के आपसी रिश्ते को किस तरह से, किस नजर से देखती हैं?
0: हिंदी उर्दू का जो संबंध है वो बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। प्रेमचंद तो ये हिंदी के भी रहे हैं और उर्दू के भी रहे हैं। बात यह है कि प्रेमचंद की जब हम बात करते हैं तो चूंकि वो उर्दू से हिंदी में आए थे तो ये एक अलग मसला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत तेरे ऐसे रचनाकार हिंदी में भी जो लिख रहे हैं, जैसे राही मासूम रजा
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने जो है हिंदी में लिखा है। गुलशेर खान शानी हिंदी में लिख रहे हैं। हम ऐसा नहीं है जैसे गालिब को पढ़ते हैं, भले ही हमारी लिपि जो है हिंदी की चूंकि देवनागरी है, वो हम गालिब को जब पढ़ते

0: हैं तो हम उसको हिंदी में ही पढ़ते हैं, उस लिपि में ही पढ़ते हैं, लेकिन हमसे वो इतर नहीं है। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो अब देखिए कि वैदिक संस्कृति पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा या बहुत अधिक जो प्रभाव पड़ा वो इस्लामिक संस्कृति का पड़ा। अब जब हम ये कहते हैं अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारे, तो वहाँ पे हिंदी जो है वो भाषा की बात नहीं करते हैं, वो वहाँ पे हिंदी जब कहते हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी बात करते हैं,
1: उसको जोड़ने की
0: आवाम की बात करते हैं और उसको जोड़ने की बात करते हैं। तो इस तरह से इसकी जो विरासत, एक साझी विरासत लेकर जो है हिंदी चल रही है और हमने कभी इसको एक दूसरे से अलग या इतर नहीं माना है।
1: जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। क्या आपको लगता है कि भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेकर कमजोर होती हैं या फिर वो और मजबूत होती हैं?
0: भाषाएं जब भी दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करेंगी वो बहुत मजबूत होंगी।
1: जी,
0: कमजोर होने का कोई सवाल इसलिए भी नहीं उठता है क्योंकि जब भाषाएं दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं तो वो अपनी शब्द संपदा को मजबूत बना रही होती हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम अपनी भाषा या दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करें तो ये हम ध्यान रखें कि वो अनावश्यक ना हो, यानी हम सिर्फ दिखावे के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो है शब्दों का ग्रहण या उपयोग ना करें, बशर्ते कि वो हमारी भाषा को समृद्ध बनाए, हमारे विचार जो है उसकी अभिव्यक्ति को और मजबूत करें।
1: जी बिल्कुल, अपनी हर एक भाषा की अपनी एक अहमियत होती है, वो ना खोए, वो अपनी अहमियत को बिल्कुल बनाए रखे मजबूती से।
0: जी,
1: भले ही हम दूसरे जबानों से, दूसरी भाषाओं से कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स ले भी रहे हैं,
0: और हिंदी ने तो हमेशा जो है दूसरी भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया, वहाँ देश शब्द है, विदेश शब्द है, तो ये सारे शब्द उन्होंने ग्रहण करके अपनी भाषा को मजबूत बनाया।
1: जी, आज का दौर डिजिटल दौर हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, तो इस दौर में AI का दौर हो चुका है, पूरी तरह से डिजिटल दौर है, हर काम डिजिटली हो रहा है, तो इस दौर में हिंदी की क्या अहमियत है और इसमें क्या क्या मौके आ सकते हैं हिंदी को बेहतर बनाने के लिए?
0: जब समय बदलता है उसके साथ जो है भाषा हो या किसी और भी क्षेत्र में चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ अवसर भी आता है। तो जाहिर सी बात है जब AI का युग आ चुका है तो इसने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, तो हिंदी के लिए ये चुनौती से ज्यादा मुझे लगता है कि अवसर है। आप हिंदी में ई-बुक्स, इसके बाद जितनी भी शैक्षणिक जो सामग्रियां हैं उसको अगर हम AI या डिजिटल कर दें, जो हमारे पुस्तकालय हैं उसको पूरी तरह से डिजिटल कर दें, तो मुझे लगता है कि ये एक अवसर के रूप में आप देख सकते हैं।
1: एक और क्वेश्चन ये कि नई पीढ़ी तक हिंदी को पहुंचाने के सबसे प्रभावी माध्यम यानी सबसे बेहतरीन जरिया आपके अनुसार क्या है? जैसे किताबें, किताबें तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन रेडियो है, सिनेमा है, सोशल मीडिया या कुछ और है?
0: आपने जितने माध्यम की बात की ये सभी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, और आज जिस तरह का दौर आ गया है बच्चे किताबें कम पढ़ रहे हैं और नेट और सोशल मीडिया से चीजों को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनको किताबों से जोड़ने के लिए आपको सारी चीजें जो है डिजिटलाइज करनी होगी। उनको अगर घर में किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो वो रास्ता चलते हुए जो है फोन पे सुन लेते हैं किताबों को या कुछ कहानियों को, तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, जब हमारा पूरा साहित्य जो है वो अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए तो ये मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जोड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि डिजिटलाइज्ड है तो मोबाइल हमारे सभी के हाथों में है और जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है बस अपना मोबाइल खोल लेते हैं और उसमें कुछ भी तलाश करना हो तलाश कर लेते हैं, तो बहुत आसानी हो गई है।
0: बहुत यहाँ पे जो है देखने को मुझे मिलता है कि आज हम किताबों से ज्यादा जो है मोबाइल में सर्च शुरू कर देते हैं।
1: जी,
0: तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि हम उन चीजों को ढूंढ रहे हैं और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम क्या ऐसा शब्द जो है वो बोले कि हम जो चीज चाहते हैं वो जानकारी हमें तुरंत मिल जाए।
1: आपको हिंदी का कोई ऐसा मुहावरा या कोई ऐसी बात कौन सी पसंद है जो आप हिंदी के श्रोताओं को बताना चाहें? हमारे
0: मुहावरे इस तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जैसे एक ये कह सकते हैं, नर हो ना निराश करो मन को।
1: हाँ,
0: तो जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो ये अगर मैं सोच लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, जब निराशा है तो आशा भी है। और एक कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मुझे बेहद पसंद है, उन्होंने एक जगह कहा था कि अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो लिखने लायक कुछ कर जाओ और पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ।
1: वाह,
0: तो ये मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने इसे लिख के रखा है कि अगर सचमुच आपको, क्योंकि सदा के लिए कोई अमर नहीं होता, लेकिन अगर आपको सचमुच मरने के बाद भी जीना है तो आपको सचमुच कुछ ऐसा कर जाना होगा कि लोग आप पे लिखें, या फिर आप कुछ ऐसा लिख जाइए कि लोग आपको पढ़ें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये तो

0: आपने एक अच्छा मैसेज दिया, लेकिन मैसेज के तौर पर मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें?
1: क्योंकि हिंदी दिवस पे हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो मैसेज मेरा ये है कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, अगर हम हिंदी, चूंकि हमारी राजभाषा है, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हिंदी एक न एक दिन राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सामने जो है मजबूती से खड़ी होगी। और दूसरी एक चीज, हम बंगाल से हैं, तो मुझे लगता है कि आप चाहे कोई भी भाषा हो, उसे सीखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और अगर आप भाषा सीखते हैं तो उसका कहीं ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा या अपनी भाषा को जो है हे दृष्टि से देख रहे हैं या हीन समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बंगाल में रहते हैं तो आपको बांग्ला सीखनी चाहिए, अंग्रेजी चूंकि आज हमारी जरूरत है सीखनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी अपनी भाषा के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की हीन भावना ना फैले। और बाकी हमारी भाषा जो है हमेशा समृद्ध होती रहे, हम पढ़ें हिंदी में, लिखें हिंदी में, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, तो सोच का जो दायरा है वो हमारा विकसित हो और हमारी भाषा समृद्ध हो, यही कामना है।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। वाकई ज़बानें दीवारें नहीं हैं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करती हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रंगों, दिलों, रिवायतों और जज्बात को एक खूबसूरत धागे से पिरो देने वाली जबान भी है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब अहद करते हैं कि हिंदी समेत तमाम हिंदुस्तानी जबानों का एहतराम करेंगे, उन्हें सीखेंगे और अपने आने वाली नस्लों तक उनकी खुशबू, उनकी मिठास और विरासत तक पहुंचाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस वक्त कम वक्त में हम बहुत कुछ सीखना चाहते थे। जितना आपने सिखाया, आपने हमें बताया, बहुत ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आकाशवाणी में हमारे साथ आई और हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को आपने बहुत कुछ बताया। बहुत धन्यवाद।
2: तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चराग, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। मौज़े सामीन, अभी आप हिंदी दिवस के ताल्लुक से मोहतरमा महमूदा खानम से एक खसूसी बातचीत समात फरमा रहे थे। आपके साथ थी शाइस्ता नाज। हसरतें खाक हुई मिट गए अरमा सारे, हसरतें खाक हुई मिट गए अरमा सारे, लुट गया कूचाए जाना में खजाना दिल का, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। दोस्तों, अगर कोई कहे कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, भाई ऐसे में लाजमी है कि आप रुक जाएं और चल पड़ें उस मकाम की तरफ जहां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव का जंगलात हैं। जी हाँ दोस्तों, बात सुंदरबन की हो रही है। आकाशवाणी कोलकाता की खसूसी पेशकश सुहाना सफ़र में आज आपको फितरी हुस्न का दीदार कराने सुंदरबन का रुख करते हैं, आपको लिए चलते हैं सुंदरबन। अगर आपके पास दो से तीन दिनों की फुर्सत है और नेचर लवर हैं और मसवरे कायनात की तख्लीक का करीब से मुशाहदा करना चाहते हैं, तो यकीन माने सुंदरबन की सियाहत आपकी बेहतरीन पसंद होगी। इस दिन में तेरे हुस्न की वो जलवा गरी है, इस दिल में तेरे हुस्न की वो जलवा गरी है, जो देखे है कहता है कि शीशे में परी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर्स का मस्कन सुंदरबन की सियाहत का एक सनसनीखेज और यादगार तजर्बा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव का जंगल दो हिस्सों में मुनकसिम है, जिनमें 60% पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के पास है, जबकि 40% भारत के हिस्से में आता है। यहाँ का सफ़र ज़्यादातर बजरिया कश्ती होती है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा यानी इलाका बड़े और छोटे जजीरे नदियों पर मुश्तमल है। अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों का मौसम सुंदरबन जाने वालों के लिए बेहतरीन माना जाता है। नमी कम होती है और जंगली जानवरों के नज़र आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो आइए आज के इस सुहाने सफ़र में सुंदरबन की सैर करते हैं। सुंदरबन एक ऐसा खित्ता है जहां फितरत अपनी खालिस तरीन शक्ल में सांस लेती है, जहाँ खूबसूरत रॉयल बंगाल टाइगर, गैर मुल्की परिंदे, सरपेंटाइन क्रैक्स और मीलों फैली मैंग्रोव के जंगलात हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इस खत्ते में मुसव्वर कायनात ने अपनी तमाम नवाजिशें कुछ इस तरह उतारी हैं कि आशिक

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। मैं हूं पॉपी आपके साथ, और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के खूबसूरत गीत के साथ।

अब एक विशेष सूचना, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल, योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत

0612 अथवा 0332 0505 00 पर संपर्क कर सकते हैं। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के

दोस्तों अब एक सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सरकार योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7012 में गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb अथवा gmail.com माफ कीजिए दोस्तों adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त बताए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए एक डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा के दूरभाष से भी संपर्क किया जा सकता है और ये दूरभाष के नंबर इस प्रकार हैं 0332210250, 0332210612 अथवा 0332210500। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए।

पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। सन 1949 में आज इस दिन की शुरुआत की गई थी और पूरे देश में कई कई जगह पे कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है।

पहल में आज अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अटल पेंशन योजना एक सरकार द्वारा गारंटेड पेंशन स्कीम है जो कि मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार जैसे लोगों के लिए है। और आपको बताएं कि 60 साल के बाद हर महीने इसके इस योजना के तहत 1,000 अथवा 2,000 अथवा 3,000 अथवा 4,000 या 5,000 आप खुद ही चुन सकते हैं और ये राशि आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपको बताएं कि आपके बाद आपकी पत्नी या पति के अथवा पत्नी या पति को सेम पेंशन मिलता रहेगा। दोनों के बाद पूरा जमा पैसा तकरीबन 1,80,000 से 8.5 लाख तक नॉमिनी को भी मिल सकता है। हर साल अप्रैल में पेंशन अमाउंट बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। इसके लिए भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 तक होना है, साथ ही सेविंग्स बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स देने वाले लोग इसमें नया अकाउंट भी खोल सकते हैं। कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन यानी योगदान आपको देना है। ये थी जानकारी अटल पेंशन योजना के बारे में। अब थोड़ी ही देर में आप पाश्चात्य कार्यक्रम सुनेंगे, प्रस्तुतकर्ता संयुक्ता नंदी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़

0: रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Home Minister Amit Shah has said BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA-ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on the 12th and 13th of this month, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of states or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. The government has said the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control due to the relentless efforts of the army. In its latest annual report 2000

0: Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to a US Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान

0: बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागरूक किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में जाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि

सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा ज्ञान के

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कम्युनिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন ভীম পলশ্রীর আগে খেয়াল, শিল্পী মঞ্জুরী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন পণ্ডিত দেবাশিস সরকার, হারমোনিয়ামে দেবাশিস অধিকারী। ভীম পলশ্রীর আগে খেয়াল।

0: नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत, सुव्यवस्थित और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के पनबिजली बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन में कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। रूपरेखा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेशानुसार तैयार की गई है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:21:02 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। उर्वशी के झरोखा में आज हम आपको बताएंगे बागुरुम्बा असम की सांस्कृतिक पहचान के बारे में।

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग राज्यों और समुदायों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं, लोकगीत और लोकनृत्य है। असम भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। असम के बोडो समुदाय की संस्कृति में बागुरुम्बा का विशेष महत्व है। बागुरुम्बा एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और पारंपरिक लोकनृत्य है जो बोडो समाज की जीवन शैली, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं को अभिव्यक्त करता है। बागुरुम्बा मुख्य रूप से बोडो समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा समूह में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य की गतिविधियाँ बहुत ही सहज, लयबद्ध और मनमोहक होती है। नृत्य के दौरान कलाकार अपने हाथों, पैरों और शरीर की विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से प्रकृति और जीव जंतुओं की सुंदर गतिविधियों को दर्शाते हैं। बागुरुम्बा की नृत्य भंगिमाएं पक्षियों के उड़ने और तितलियों के स्वतंत्र रूप से विचरण करने जैसी प्रतीत होती है। यह नृत्य बोडो समुदाय के प्रमुख पर्व बिबसागु से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। बिबसागु वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है और इसे बोडो समुदाय के नए वर्ष के स्वागत से भी जोड़ा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सामूहिक रूप से गीत संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। बागुरुम्बा इस उत्सव के उल्लास और आनंद को अधिक बढ़ा देता है। बागुरुम्बा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका प्रकृति से गहरा संबंध है। बोडो समाज का जीवन लंबे समय से प्रकृति और कृषि से जुड़ा रहा है। इसने उनके लोकगीतों और लोकनृत्यों में पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, तितलियां और प्राकृतिक वातावरण की झलक दिखाई देती है। बागुरुम्बा में नर्तकियों की कोमल और लयात्मक गतिविधियां प्रकृति की सुंदरता और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। इस नृत्य की प्रस्तुति के समय विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। खाम यानी ढोल, सिफुंग यानी बांसुरी और अन्य पारंपरिक वाद्य इसकी संगीतात्मक सुंदरता को बढ़ाते हैं। वाद्य यंत्रों की ताल के साथ नर्तकियां एक साथ कदम मिलाकर नृत्य करती हैं। समूह में किया जाने वाला यह नृत्य देखने वालों के मन में उत्साह और आनंद उत्पन्न करता है। बागुरुम्बा की पारंपरिक वेशभूषा में इसकी एक विशेष पहचान है। नर्तकियां बोडो समाज के पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और पारंपरिक आभूषणों से सजती हैं। रंग बिरंगे वस्त्र, सुंदर आभूषण, संगीत और सामूहिक नृत्य मिलकर एक आकर्षक सांस्कृतिक वातावरण तैयार करते हैं। यह वेशभूषा बोडो समुदाय की कला, कुशलता और हस्तकला परंपरा को भी प्रदर्शित करती है। बागुरुम्बा केवल मनोरंजन या नृत्य का माध्यम नहीं है, यह बोडो समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके माध्यम से एक पीढ़ी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। लोक नृत्य के माध्यम से समाज का इतिहास, प्रकृति के प्रति प्रेम और सामूहिक जीवन की भावना भी व्यक्त होती है। बागुरुम्बा आज भारतीय लोक नृत्य की विविध परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। हालांकि आधुनिकता और बदलती जीवन शैली के कारण कई पारंपरिक लोक कलाओं के सामने संरक्षण की चुनौती है। नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं से जोड़ना आवश्यक है। बागुरुम्बा हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके सुंदर नृत्य भंगिमाओं में खुशी, स्वतंत्रता, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाई देता है।

कहा जा सकता है कि बागुरुम्बा असम की समृद्ध लोक संस्कृति और बोडो समुदाय की जीवंत परंपरा का अनमोल प्रतीक है। इसमें संगीत, नृत्य, प्रकृति, वेशभूषा और सामुदायिक भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि बोडो समाज की सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। हमें बागुरुम्बा जैसी लोक कलाओं का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए ताकि भारत

और अब कुछ फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दाग से नगमा। गीतकार है साहिर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अर्जुन तक लगीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म है दीवार। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

अशंतक लगीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म है कुली नंबर 1। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म काला पत्थर से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर और साथी। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत राजेश रोशन का है। इस गीत को सुनते सुनते आपके दोस्त रोशन मुराका को उर्वशी कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के आज्ञा दें। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं

0: किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security and the welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology and critical minerals could become a hurdle to progress. India hosted the summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, placing people-centered development and the interests of the global

भाषा केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान का आईना भी होती है। समय के साथ समाज बदलता है और उसके साथ भाषा भी अपना रूप बदलती रहती है। आज हम डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसका प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज हिंदी ने किताबों और अखबारों से निकलकर मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया अंदाज, नई शैली और नई ऊर्जा प्राप्त की है। एक समय था जब हिंदी में अपनी बात कहने के लिए पत्र लिखे जाते थे, फिर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविजन आए। आज सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को और भी आसान बना दिया है। मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है।

आज हिंदी में लिखी गई एक छोटी सी पोस्ट, कविता, शायरी या विचार कुछ ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। इसने हिंदी को केवल पढ़ने की भाषा नहीं बल्कि तुरंत संवाद करने की भाषा बना दिया है। सोशल मीडिया पर हिंदी का सबसे दिलचस्प परिवर्तन हिंग्लिश के रूप में दिखाई देता है। हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण आज युवाओं की बातचीत का समान हिस्सा बन गया है। यह बदलाव एक और हिंदी को डिजिटल दुनिया में सहज बनाता है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी खड़ा करता है कि कहीं हम सुविधा के कारण अपनी लिपि और भाषा की सुंदरता को तो नहीं भूल रहे हैं। इसलिए आवश्यकता संतुलन की है।

सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने हिंदी को अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिक मंच बना दिया है। पहले किसी लेखक या कवि की रचना लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशक या पत्रिका की आवश्यकता होती थी। आज कोई भी व्यक्ति अपनी कविता, कहानी या लेख सीधे पाठकों तक पहुंचा सकता है। गांव, छोटे शहर और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे हिंदी साहित्य में नए लेखक, कवि और रचनाकार सामने आ रहे हैं।

सोशल मीडिया ने हिंदी की रचनात्मकता को भी एक नया रूप दिया है। आज दो चार पंक्तियों की कविता या शायरी भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाती है। हास्य व्यंग या सामाजिक संदेशों को मीम्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस नई शैली में भाषा छोटी, सरल और प्रभावशाली होती है। कई बार कुछ शब्द और एक तस्वीर मिलकर वह संदेश दे देते हैं जिसे समझाने के लिए पहले पूरा लेख लिखना पड़ता था।

इंटरनेट ने हिंदी को भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंचाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले हिंदी भाषी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहते हैं।

हिंदी गीत, कविता, कहानियां, वीडियो और शॉर्ट्स बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस प्रकार सोशल मीडिया हिंदी के प्रचार और प्रसार का शक्तिशाली माध्यम बन गया है। जहां सोशल मीडिया ने हिंदी को अनेक अवसर दिए हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी पैदा की हैं। जल्दी जल्दी लिखे के कारण वर्तनी की गलतियां बढ़ रही हैं। कई बार हिंदी के स्थान पर आवश्यकता से अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को छोटा करके लिखने और व्याकरण की उपेक्षा करने की आदत भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर अनौपचारिक बातचीत में भाषा का छोटा या मिश्रित रूप स्वीकार हो सकता है, लेकिन यही शैली यदि विद्यालय परीक्षा साहित्य या औपचारिक लेखन में अपनाई जाए तो हिंदी की गरिमा और स्पष्टता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमें आधुनिक डिजिटल हिंदी और शुद्ध हिंदी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।

हमें समझना होगा कि भाषा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, भाषा समाज के साथ विकसित होती है। संस्कृत से प्राकृतिक अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास तक भाषा लगातार बदलती रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर हिंदी में होने वाले परिवर्तन को केवल भाषा का पतन मानना उचित नहीं होगा। आज की हिंदी नए शब्दों को स्वीकार कर रही है, नई तकनीक के साथ तालमेल बैठा रही है और नई पीढ़ी से संवाद कर रही है, यही उसकी जीवंतता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी को आधुनिक भी बनाएं और उसकी मूल सुंदरता को भी सुरक्षित रखें। हमें देवनागरी में हिंदी लिखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और युवाओं को हिंदी साहित्य, कविता और पुस्तकों से जोड़ना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके हिंदी की अच्छी साहित्य, ज्ञानवर्धक सामग्री और सांस्कृतिक विषयों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

हिंदी का यह अंदाज हमें सिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है। जरूरत केवल इतनी है कि हम आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए अपनी भाषा की सुंदरता, शुद्धता और गरिमा को न भूलें। हिंदी बदली है, मिट्टी नहीं। अंदाज बदला है, पहचान नहीं। कल हिंदी किताबों में थी, आज मोबाइल की स्क्रीन पर है और आने वाले कल में दुनिया का हर डिजिटल मंच पर होगी। यही सोशल मीडिया के दौर में हिंदी की नई पहचान और नया अंदाज है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा का नया अंदाज। वार्ता के बाद अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

हर्ष पर आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 6:31:42 हुए हैं। वक्त हो रहा है गुलगुलसन का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मरारका। आइए गीत और गजल के कार्यक्रम गुलगुलसन में सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई हुई गजल।

आइए गुलगुलशन कार्यक्रम की आखिरी गजल सुनते हैं रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाज़ में। और इस गीत इस गजल को सुनते सुनते गुलगुलशन कार्यक्रम के अपने रेडियो वाले दोस्त रोशन मराका को आज्ञा दीजिए, सुनिए कार्यक्रम की आखिरी गजल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के

0: अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said if even one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the two-day Hindi Divas 2026 and the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai. He said that though India has many languages and dialects, the Indian sentiment and the voice of the nation must remain one. He said, linguistic diversity is the strength of the country and Hindi can serve as an effective bridge of communication among various Indian languages, thereby strengthening national unity. He also lauded Maharashtra for its multilingual culture. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security, and the welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 7:30:22 हुए हैं। वक्त हो रहा है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले एक नजर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषाओं में से एक है और ये लोगों को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, साहित्य और भावनाओं की पहचान भी है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरी भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व करने तथा हिंदी के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है। एक नजर में गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख और लोकप्रिय त्यौहार है। यह भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और शुभता का देवता माना जाता है। इस दिन लोग घरों और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। लोग भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। कई स्थानों पर भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं। गणेश चतुर्थी हमें ज्ञान, सद्भाव और अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। हमें त्यौहार मनाते समय पर्यावरण की रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये थी एक नज़र।

0: आइए। और अब साहित्य सरिता, साहित्य सरिता में आज की परिचर्चा हम सुनवाएंगे आपको हिंदी दिवस पर। अतिथि हमारे अवनेन्द्र नाथ त्रिवेदी और उनसे बातचीत कर रही हैं देविका गुप्ता।
1: निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त देविका। आज यानी 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी कोलकाता के हिंदी विभाग ने एक भेंट वार्ता का आयोजन किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में शिरकत कर रहे हैं श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी। आपका स्टूडियो में स्वागत है, नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: हिंदी हमारी राजभाषा है ये हम सभी जानते हैं, तो इस विषय पर आपसे जो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी वो ये है कि हिंदी दिवस का क्या महत्व है?
2: 14 सितंबर हमारे देश के भाषिक सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि इसी दिन 1949 को भारत की संविधान सभा ने ये एकमत से संकल्प लिया कि देश जो स्वाधीन होने जा रहा है, लेकिन स्वाधीन होने जा रहा है का अर्थ है कि संविधान लागू होने जा रहा है
1: जी।
2: उस संविधान के लागू होने के साथ देश के कामकाज की एक भाषा भी बनेगी और वह होगी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी
1: जी।
2: तो इस नाते सन 1949 में इस बात का संकल्प संविधान सभा ने लिया, हम उसी की याद प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं
1: जी। बहुत खूब कहा आपने, नागरी लिपि के बारे में जब बात छिड़ी है तो राहुल सांस्कृतायन का कुछ उनके जो शब्द हैं वो जरूर सामने रखना चाहूंगी अपने श्रोताओं के। हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है।
2: बिल्कुल, वैज्ञानिकता का ये अर्थ है भाषा की दुनिया में कि आप जैसा लिखें वैसा बोलें
1: जी।
2: भाषा के दो पक्ष हैं, बोला जाता है तो ध्वनियां निकलती हैं जो आपके कानों में पहुंचती हैं, और दूसरा जब हम लिपियों में लिखते हैं तो वो आप तक आंखों के सहारे पहुंचती हैं। तो जैसा आपने लिपियों में लिखा है उन लिपियों को उसी प्रकार उच्चरित किया जाए, या जैसा उच्चरित हो रहा है वैसा ही लिपि में उतार दिया जाए। ये शत प्रतिशत तो कदाचित संभव नहीं होता, लेकिन 90-99% जब सही होता हो तो उसको हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं, और उस अर्थ में हिंदी की लिपि देवनागरी का कोई जवाब नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य क्या है?
2: हमारा देश बहुभाषा भाषी देश है
1: जी।
2: अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और ये अनेक भाषाएं भी दुनिया के जो अनेक भाषा परिवार हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया की जितनी भाषा परिवार की भाषाएं हैं वो प्रायः सभी बोली जाती हैं, कम या ज्यादा। अब ऐसे बहुभाषा भाषी देश में एक राष्ट्र की संकल्पना, एक केंद्रीय सत्ता की संकल्पना अगर हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने की है तो उसके लिए सबको जोड़ना और सब तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, और पहुंचने और जुड़ने के लिए भाषा सबसे बड़ा बंध है। तो इसलिए आवश्यक था कि इस बहुभाषा भाषी देश में कोई एक राष्ट्रीय संपर्क की भाषा और सरकार के कामकाज की दृष्टि से राजभाषा के रूप में एक भाषा अपनाई जाए, वह हिंदी है
1: जी। बिल्कुल। और अगर बात की जाए कि इस दिवस का पालन कब से शुरू किया गया, मतलब कब से

0: शुरुआत हुई हिंदी दिवस मनाने की?
1: 1964 से।
0: अच्छा,
1: और ये हम मना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार बढ़ता है।
0: जी, अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आधिकारिक भाषा के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, और राजभाषा गौरव पुरस्कार, कृति पुरस्कार, इसके बारे में भी हमें अगर थोड़ी जानकारी दे दें तो बहुत अच्छा होगा।
1: आधिकारिक भाषा का तात्पर्य आपका राजभाषा हिंदी से होगा जरूर?
0: जी बिल्कुल।
1: तो दो बातें हैं, देखिए हमारा चूंकि ये राज्यों का संघ है, ये हमारा देश, तो राज्य भी हैं, तो राज्यों को अपना अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों के लिए अपनी राजभाषाएं तय करें। हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है, संघ सरकार का अर्थ है भारत सरकार की राजभाषा है। तो आपका पहला प्रश्न था कि संघ सरकार की राजभाषा अर्थात आधिकारिक राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि भाषा के जो कई प्रकार हैं, फंक्शन हैं, उसमें एक फंक्शन है कामकाजी भाषा का फंक्शन। कामकाजी भाषा का अर्थ है दफ्तर के कामकाज की भाषा और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में आने वाली भाषा। तो आप सबको पता है कि हिंदी इस देश की संपर्क भाषा के रूप में शताब्दियों से काम कर रही है, लेकिन हिंदी इस देश के राजकाज की भाषा बनने के लिए आई तब जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। तो एक तरह से आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का जन्म 1950 के 26 जनवरी से ही शुरू होता है। अब यह जो आधिकारिक भाषा थी बोलचाल की भाषा से अलग, क्योंकि सरकारी कामकाज में निर्भ्रांत होना, शब्दों का सही अर्थ होना, अर्थ का अनर्थ न हो जाना, इन बातों पर विचार किया जाएगा जब, तो इसके लिए जरूरी होगा कि पारिभाषिक शब्दावली हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम किसी बात को जब कहें तो उसका अर्थ उतना ही समझा जाए। एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि आकाशवाणी एक लोक ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर के लिए क्या शब्द चलता है मुझे तत्काल याद नहीं आ रहा है, तो जब हम ये कहते हैं कि लोक ब्रॉडकास्टर है तो लोक का यहाँ जो शब्द है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पब्लिक। तो लोक को पब्लिक समझा जाए, लोक को पीपल न समझ लिया जाए, तो इन सारी चीजों की सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए भारत सरकार ने, जहां तक मुझे याद है, 1956 में शब्दावली आयोग का गठन किया था, जो पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि शब्दावली आयोग गठित हो, शब्दावलियां तय हों और मानक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद शुरू किया जाए। जो मानक ग्रंथ अंग्रेजी में थे तो ज्ञान विज्ञान के प्रचार के लिए, तो शब्दावलियों को तय करना, मानक ग्रंथों की रचना करना, ये कार्य शिक्षा मंत्रालय ने लेकर के आगे बढ़ाया और देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, भारत सरकार कार्यालयों में हिंदी का काम बढ़े, यह कार्य संघ सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने किया। तो गृह मंत्रालय कार्यालयों में हिंदी की प्रगति की देखरेख करता है, शिक्षा मंत्रालय हिंदी को भारत की एक प्रमुख भाषा और संपर्क भाषा के नाते इसकी समृद्धि की बात करता है। इसके लिए बहुत सारे आयोग, बहुत सारी समितियां काम कर रही हैं, जिसका हम प्रसंगवश आपको बताएंगे
0: जी।
1: अब आपने जो एक प्रश्न इसमें कर दिया राजभाषा गौरव पुरस्कार के विषय में और कीर्ति पुरस्कार के विषय में, तो अब चूंकि भाषा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आप किसी को कहें कि तुम्हें यह बोलना ही पड़ेगा तो भाषा के संदर्भ में ऐसा करना
0: संभव नहीं,
1: भाषा को नुकसान पहुंचाना हो जाएगा। तो प्रेरणा और प्रोत्साहन, क्योंकि भाषा जितना जोड़ती है उतना ही तोड़ती भी है, भाषा के नाम पर जितना जुड़ाव होता है उतना बिलगाव भी होता है। तो इससे दूर हटने के लिए सरकार की सुचिंतित नीति है प्रेरणा और प्रोत्साहन की। राजभाषा कर्मचारी के नाते अपने साथियों, अपने बैंक के और विभिन्न कार्यालयों के लोगों को प्रेरित करते हैं कि काम करो। तो यह प्रेरित कैसे करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करके, उन्हें आर्थिक इंसेंटिव दे करके, और उसी का जो सर्वोच्च रूप है वो राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार है जो केंद्रीय स्तर पर दिया जाता है
0: जी। यहाँ पर आपने एक बात कही, पारिभाषिक शब्दावली का जिक्र किया, तो हिंदी के पाठ्यक्रम में भी हम अक्सर देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली, तो ये तो एक तरह से प्रोत्साहन हुआ कि राजभाषा के लिए बच्चे जो हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी हम देखते हैं। लेकिन इसके अलावा राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो, या फिर जो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कर रहे हैं या फिर स्नातकोत्तर जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्रेरित हो राजभाषा की तरफ?
1: जैसे हमने आपसे कहा, संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व तो सीधा सीधा गृह मंत्रालय के पास है और वो सीमित है कर्मचारियों तक, लेकिन हिंदी सिर्फ कार्यालयों तक ही तो सीमित नहीं है। तो इसका दूसरा पक्ष जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है
0: जी।
1: जिनके विषय में आपने कहा, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की योजना चलती है। उदाहरण के लिए हिंदीतर प्रदेशों में जो हिंदी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दूसरे प्रांतों में ले जाकर के, हिंदी प्रांतों में ले जाकर के हिंदी सीखने का अवसर देना, शैक्षिक आदान।

0: प्रदान का एक कार्यक्रम चलता है। दूसरा, नव लेखक शिविरों का आयोजन करते हैं हम हिंदीतर भाषा भाषी प्रदेशों में। हम जो बच्चे हिंदी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हिंदीतर हैं, बंगला है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती हैं, उनको हम एक निश्चित समय तक एक शिविर में रखते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं आने जाने का, और हिंदी के विद्वानों के साथ उनको रखकर हिंदी वो बेहतर पढ़ सकें इसकी व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लिखना चाहते हैं उनके लिए भी राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी मूल लेखन पुरस्कार की व्यवस्था है। और उससे जो बड़ा इंसेंटिव वही है कि हिंदी संघ की राजभाषा होने के नाते भारत के प्राय सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, तो इसलिए वहाँ छात्र अध्यापक बनने के लिए भी पढ़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रही है, और इसलिए अन्य नौकरियों में काम करने वाले लोग भी चाहते हैं कि वे हिंदी की भी अच्छी जानकारी प्राप्त करें। यह भी एक है कि उनको एक नौकरी का अवसर मिल रहा है हिंदी के माध्यम से। अनुवाद का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर देखा जाए तो भाषाओं के नाम पर अगर शुद्ध भाषा को लेकर देखें तो हिंदी के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं भारतवर्ष में शायद किसी और भाषा के पास नहीं होगी, सिर्फ एक भाषा के नाम पे।
1: इस विषय में ये मैं जानना चाहूंगी कि हिंदी को ही राजभाषा के रूप में क्यों चुना गया। हाँ। क्योंकि आपने ये भी कहा कि भाई वो साइंटिफिक एक लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच भी है, तो इसके अलावा और क्या रीजंस हैं और क्या वजह हैं?
0: पहली बात तो ये कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और देश के बारे में बातें हो रही थी तो कहीं शुरू में किसी के दिमाग में ये बात थी ही नहीं कि संघ के लिए कोई राजभाषा बोल के भी कुछ विषय बनेगा, बल्कि राजभाषा शब्द भी हिंदी में पहले नहीं था, संपर्क भाषा था, और गांधी जी इसके लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करते। तो राजभाषा शब्द का प्रयोग आपने देखा ही होगा कि संविधान सभा के आखिरी चरण में, आपको पता ही है कि नवंबर की 26 तारीख को संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में, और उसी साल ये सितंबर की 14 तारीख की बात है, यानी संविधान के निर्माण की समाप्त पूर्णता के कुछ ही दिन पहले हिंदी पर निर्णय हुआ। यह निर्णय अनायास नहीं हुआ। इस निर्णय को लेने में सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी संघ की राजभाषा हो, यह प्रस्ताव हिंदी वालों ने नहीं, हिंदीतर भाषा भाषी लोगों ने किया। ये बहुत महत्व की बात है। अब उस विस्तार में जाएंगे तो बात लंबी होगी। तो हिंदीतर भाषा भाषी लोगों के मन में ये बात थी कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा हो, क्योंकि उसके दो ही आधार थे। एक तो ये कि भारत की अधिकांश भाषाओं से हिंदी का संपर्क था और हिंदी सर्वत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। तो सर्वत्र भारत के हर कोने कोने में नहीं कहेंगे, क्योंकि कोना कोना कहना तो भारत बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र भारत का नहीं था जहां हिंदी बोलने वाले या हिंदी को समझने वाले लोग ना हों। एक और संख्या की बल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी लिपि में लिखी जाने वाली जिसका सीखना समझना किसी के लिए आसान था। हमें इस बात का भ्रम हटा देना चाहिए कि हिंदी इसलिए नहीं आ गई कि हिंदी कोई बहुत बड़ी साहित्यिक भाषा थी भारत की। भारत की अनेक भाषाएं हैं जिसका साहित्य, मैं मानता हूं कि हिंदी से कहीं बेहतर वो साहित्य है। बंगला उसका एक उदाहरण हो सकता है।
1: जी, हम अक्सर देखते हैं कि दफ्तर में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार है वो काम कर रही है, लेकिन सरकारी दफ्तरों के अलावा इसके प्रचार का कोई प्रावधान है?
0: सरकारी दफ्तरों के अलावा, जैसे हमने आपसे निवेदन किया, स्वाधीनता के बहुत पहले गांधी जी ने देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्वप्न देखा था, और उसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में अपने दूत भेजे थे, और अंत में जाके 1936 में उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी, जहां बाद में चल के आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी बना है। उसकी जड़ उसी वर्धा से जुड़ी है। तो 1936 में गांधी जी ने जो संस्था बनाई थी, आज उसकी संस्था अपने कलकत्ते में भी काम करती है, गुवाहाटी में काम कर रही है, भुवनेश्वर में काम कर रही है, और वर्धा में काम कर रही है, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में काम। तो इस प्रकार ये सभाएं हिंदी के लिए काम कर रही हैं, और भारत संघ के जितने भी कार्यालय हैं, जैसे हमारा बैंक, यह भी अपने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, उसके अंतर्गत भी हिंदी के कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करते।
1: भारत का राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ ये क्या क्या काम कर रही है, इसके विषय में हमें जरा आलोकित करें।
0: हाँ, जैसे हमने आपसे कहा, जब राजभाषा हिंदी का विस्तार हुआ तो इसको तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय से गृह मंत्रालय को दे दिया, क्योंकि गृह मंत्रालय ही देश की शासन का सूत्र संचालन करता है। तो गृह मंत्रालय में आने के बाद आज की तारीख में राजभाषा विभाग तीन भागों में बटा हुआ है। इसके तीन मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य कार्यान्वयन का है, जिसको हम इम्प्लीमेंट

0: इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि हर वर्ष भारत सरकार एक वार्षिक कार्य योजना बनाती है और उसी कार्य योजना को सामने रख के हम सभी अपने अपने कार्यालय में काम करते हैं। तो अब ये काम कहां तक हुआ, कहां तक नहीं हुआ, कहां तक होना चाहिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार का एक विभाग है जिसको हम कहते हैं कार्यान्वयन निदेशालय। तो राजभाषा विभाग का यह एक बहुत बड़ा निदेशालय है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय 8 हैं पूरे इस देश में। अच्छा। कलकत्ता भी उसका एक कार्यालय है। दूसरा है केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना। अब हिंदी को संघ सरकार की भाषा माना लिया गया, लेकिन हिंदी जानने वाले सभी नहीं है, तो उन्हें हिंदी में प्रशिक्षित करना, याद रहे यह प्रशिक्षण कार्यालयीन काम के संबंध में है, भाषिक नहीं, साहित्यिक नहीं। कार्यालय का जो साहित्य, प्रक्रिया साहित्य जिसमें कार्यालय के काम होते हैं, उनको करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का काम है, क्योंकि काम अंग्रेजी में होता रहा है आज तक और बहुत सारा साहित्य अंग्रेजी में पड़ा हुआ है। साहित्य का मतलब कार्यान्वयन साहित्य, उनके अनुवाद का भी एक बड़ा काम था। तो भारत सरकार की तीसरा विंग है उसको हम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहते हैं, कलकत्ते में भी उसका एक कार्यालय है और तीनों के मुख्यालय दिल्ली में है।
1: अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रोफेसर्स या फिर जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो हिंदी भाषा को लेकर बच्चों को शिक्षित करते हैं, वो आकर लोगों को शिक्षित करते हैं कि किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाए और प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। अक्सर हम लोग ये हिंदी तर क्षेत्रों में ज्यादा देखते हैं। अगला मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि राजभाषा समारोह के बारे में आप कुछ खास बातें हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा।
0: राजभाषा समारोह तो जैसे हमने आपसे कहा ये हिंदी पखवाड़ा, कहीं कहीं हिंदी माह, कहीं कहीं हिंदी सप्ताह, कार्यालय जितना बड़ा हो। तो अब उस पूरे अवधि में हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हिंदी दिवस के मनाने का औचित्य क्या था। तो औचित्य बस इतना ही था कि जो लोग हिंदी की धारा में किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े हैं उन्हें विभिन्न तरह के प्रोत्साहन परक कार्यों से हिंदी की तरफ से उन्मुख करना, एक वातावरण का निर्माण करना। इस वातावरण के निर्माण के लिए हम विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और वही महोत्सव का रूप ले लेता है। स्वरचित कविताएं, गीत, गजल, कहानियां और ये अनेक तरह की प्रस्तुतियां उस महोत्सव का अंग हो जाती है।
1: राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब
0: नहीं, ये वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता।
1: अच्छा।
0: वार्षिक कार्यक्रम का काम सिर्फ इतना है बताना कि आपने कितनी चिट्ठियां लिखनी है, आपको कितनी संगोष्ठियां करनी है, आपको जो नियम बने हैं उसका कितना अनुपालन करना है, कितनी कार्यशालाएं करनी है, कितना निरीक्षण करना है। यह आता है हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो हम अपनी हिंदी दिवस के आयोजन की जो संकल्पना है उसके अंतर्गत यह आता है।
1: राजभाषा के प्रचार प्रसार के विषय में अगर बात की जाए तो राजभाषा प्रचार प्रसार में आईटी उत्पादों का क्या योगदान है, अगर इस बारे में कुछ आलोकित करें।
0: आईटी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है आज।
1: बिल्कुल।
0: तो जब कुछ भी संभव नहीं है तो राजभाषा भी उसी का एक भाग है
1: जी।
0: तो भाषा प्रौद्योगिकी का काम जब शुरू हुआ तो भाषा प्रौद्योगिकी में पहले अंग्रेजी को ही लिया गया था और दुनिया की कुछ और भाषाओं को लिया गया था और हिंदी उसमें पिछड़ गई थी। भारत सरकार की संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण हिंदी का काम पिछड़ गया था, क्योंकि जब टाइपराइटर से काम हम करते थे तो हमारे पास टाइपराइटर थे, अचानक जब कंप्यूटर आ गया तो टाइपराइटर बेकार हो गए और कंप्यूटर पर पहले अंग्रेजी में ही काम होता था। तो भाषा प्रौद्योगिकी वालों ने हिंदी में, भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं मुख्य रूप से सीडैक, तो उन लोगों ने हिंदी में काम करना शुरू किया और आज की तारीख में हिंदी की स्थिति, यूनिकोड का इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगमन हुआ और यूनिकोड के आने के बाद सब कुछ बदल गया। यूनिकोड की संकल्पना यूं है कि जो भी भाषा होगी उस भाषा को स्पेक्ट्रम जैसी एक कोई चीज होती है उसमें उस भाषा को कोडीकृत कर दिया जाता है। उस कोडीकृत होने के बाद उस कोड को लेकर हिंदी में भेजा गया कोई संदेश दुनिया के किसी कंप्यूटर पर कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यदि वो मंगल फॉन्ट में हो तो। फॉन्ट बदल जाने से थोड़ी कठिनाई होती है, उसके बाद उन सभी में आप हिंदी में काम कर सकते हैं, बोलकर हिंदी में छाप सकते हैं, लिखकर हिंदी में सुन सकते हैं। यानी आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं है जो अंग्रेजी में होता हो और हिंदी में नहीं होता।
1: अगला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि राजभाषा विभाग आम नागरिकों के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु आईटी उत्पादों द्वारा क्या मदद करती है।
0: देखिए, पहली बात तो राजभाषा विभाग को भारत की आम जनता से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वो जो चीज तकनीकी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो तो सीमित नहीं है।
1: नहीं।
0: अब मान लो हिंदी पढ़ने के लिए लीला, प्रबोध, प्राग्ञ, जो पाठ्यक्रम तैयार है वो ऑनलाइन उपलब्ध है नेट पे, तो अब मैं एक राजभाषा अधिकारी के नाते भी उसे पढ़ सकता हूँ और आप भी पढ़ सकती हैं, हमारा भाई भी पढ़ सकता है, आपका भाई भी पढ़ सकता है। अब जैसे

0: शब्द सिंधु. अब शब्द सिंधु एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, ग्लॉसरी है. तो अब ये ग्लॉसरी यद्यपि बनाई गई थी सरकारी कामकाज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये अब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है. और राजभाषा नियमों के अंतर्गत ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में अगर हिंदी विभाग खुले हुए हैं, इसको ऐसे भी देखें, तो उसमें पढ़ने के लिए तो कोई भी जा सकता है, कर्मचारी नहीं जाएगा. कर्मचारी तो जाएगा नहीं क्योंकि तो पास कर चुका है. तो राजभाषा विभाग के राजभाषा प्रावधानों के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो यूं तो राजभाषा कार्यालयों की दृष्टि से हो रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव लाभ हर लोग ले रहे हैं और ले सकते हैं.
1: हिंदी से जुड़े अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं. तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है तो राजभाषा विभाग से वो किस प्रकार से मदद ले सकता है?
0: देखिए, सामान्य आदमी के लिए जैसा हमने आपसे भी कहा, राजभाषा विभाग काम नहीं करता है. राजभाषा विभाग की जो पाठ्यक्रम है वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि कामकाज में जो लोग जुड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं सरकारी, वही उसका इस्तेमाल करेंगे. लेकिन उसके प्रभाव से जो पुस्तकालय खोले गए हैं, जो पद बनाए गए हैं, जो हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, उसका लाभ आम आदमी ले सकता है या जो तकनीकी चीजें की गई हैं बस उसका लाभ ले सकता है. सीधे तो कुछ नहीं देखा है.
1: आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में कई बार हम लोग टंकन के लिए, टाइपिंग के लिए हिंदी के कई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो टूल्स हैं कई हद तक हमें काफी मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम कई बार टाइप नहीं कर पाते हैं और हम उसे ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं. जैसे मान लीजिए कि चंद्र बिंदु है, तो उसे अगर हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उसे बाईपास करके आगे बढ़ जाते हैं. तो ऐसे में क्या कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में जरा बताएं हमें.
0: कुछ तो सीमाएं हैं किन्हीं जगहों पर, सर्वत्र नहीं, क्योंकि टाइपिंग टूल जब बनाए गए तो हिंदी लिखने को जरा सरलीकरण करने की ओर भी लोगों का ध्यान गया. तो अब देखेंगे बहुत जगह आप काम कर रही होंगे किसी टूल में तो आपको पूर्ण विराम नहीं मिलेगा. एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, वो उस टूल को आपको छोड़ना पड़ेगा. लेकिन सरकार ने जो प्रामाणिक दिया है, जिसको हम इनस्क्रिप्ट कहते हैं, इनस्क्रिप्ट में अगर हम टाइप करते हैं सरकारी कामकाज में, अब ये दो तरह की चीजें हैं. सोशल मीडिया में काम करने के लिए टाइपिंग टूल्स अलग हैं और सरकारी कामकाज में टाइप करने के लिए हम लोगों ने अलग टूल्स बनाए हैं.
1: उन टूल्स तो के
0: उनमें
1: बारे में
0: सारा कुछ, जैसे इनस्क्रिप्ट में कह रहा हूं, इनस्क्रिप्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होती. लेकिन इनस्क्रिप्ट की कठिनाई ये होती है कि अगर आपने उनके कीबोर्ड को नहीं समझा है,
1: तो
0: रोमन कीबोर्ड लेके आए हैं, तो अब सारी चीज रोमन कीबोर्ड पर आकर टिक गई है. रोमन कीबोर्ड में अगर आप फोनेटिक में टाइप करते हैं, हम लोग दफ्तर में कार्य करते हैं, हम लोगों को कोई कठिनाई रोमन कीबोर्ड फोनेटिक में काम करने में नहीं है. लेकिन बाजार में जो चीजें उपलब्ध हैं उनमें सरलता के कारण कुछ चीजें नहीं है. अब जैसे संस्कृत में एक अवग्रह बोल के चिन्ह होता है एस जैसा, वो बहुत सारे टाइपिंग टूल में आपको नहीं मिलेंगे.
1: नहीं,
0: अगर वांग्मय में आधा अंग लिखना चाहेंगे तो बहुत जगह अंग नहीं मिलेंगे. लेकिन इनस्क्रिप्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं, इंडिक में काम करना चाहते हैं, जिसको भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया है, वहां ये कठिनाइयां नहीं के बराबर.
1: राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था. तो चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि हम लोग कई बार बोलते वक्त कई भाषाई अशुद्धि जो है हमारे जुबान पर आ जाती है, तो ऐसे में आप अपने कुछ सुझाव अगर हमारे साथ साझा करें तो बहुत अच्छा होगा कि हम किस प्रकार से अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं. खास तौर पर ये हिंदीतर क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है.
0: देखिए, हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप देने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है और अगर हम आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते रहे कम से कम 6 महीने तो मैं तो ये कह सकता हूं कि एक मानक हिंदी बोलना सभी सीख सकते हैं. रही बात त्रुटियों की, तो त्रुटियां तभी दूर होंगी जब हम अब हिंदी को उपयोग में लाएंगे. जब हम उपयोग में लाते हैं तो मानक हिंदी बोलने वालों का क्या उच्चारण है, क्या प्रयोग है, उसका ध्यान देना होता है. किसी भी भाषा को सीखने का मंत्र यही मंत्र है कि जो भाषा के मानक उच्चारण हो रहे हैं उनको सुना जाए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाए.
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए. दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की भेंट वार्ता यहीं तक. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस में भेंट वार्ता. अतिथि थे अभिनंदन रात त्रिवेदी. बातचीत कर रही थी उनसे देविका गुप्ता.

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते सुनते आपके दोस्त को आज्ञा दीजिए। फिल्म है दबंग, गायक कलाकार सोनू निगम और श्रेया घोषाल, गीत लिखा है जलीस शेरवानी ने और संगीत साजिद वाजिद का है। दर्पण कार्यक्रम का सुनिए आखिरी गीत और आपके दोस्त रोशन राघव को यही दीजिए आज्ञा, फिर मिलूंगा, नमस्कार।

0: और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता

0: उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने
3: ढल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सतलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निहाल सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18
7: से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
8: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
9: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
10: इस अवसर पर राजभवन

0: भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष पहली होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुत्किन ने भारत और विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड,

0: ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी कुदरत दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
3: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
2: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रिचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 0481 2371 7117 2371 7106 और 2331 4444, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
0: जी।
2: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 2008 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम तीनों

0: ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1,000 दिन है। अब ये जो पहले 1,000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पे जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1,000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1,000 डेज का।
1: जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं।
1: जी डॉक्टर बिष्ट,
3: नमस्कार और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की। ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है, और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
1: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है दरअसल?
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
1: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
3: थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल केवल केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि

0: अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत ज़रूरी बात है। कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है, जब उसकी भूख है, उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है। और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते
1: जी
0: खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था वो हुआ था, और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियां सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब उनमें, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वज़न जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वज़न बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
2: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार जी।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
2: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए, और जो बच्चे को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में, और दूसरा आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस डेम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन, तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हुआ। डॉक्टर बिष्ट
0: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियाँ हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए जीरो स्क्रीन टाइम है, 2 साल से कम बच्चे के लिए। तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शन नहीं बन पाते हैं और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और

0: हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं कर रखा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए, क्या है आपका प्रश्न?
2: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध दही पनीर और मक्खन घी, ये अब कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं। पनीर नकली, खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से, तब फिर इसको वापस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें, और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो वो तो जहर पे जहर, नीम कितना करेला नीम तला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
1: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से ये समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
3: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर का बना खाना खाइए, कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी, और बाकी जैसा मुनीश जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी, क्या सवाल है आपका?
4: जी जितेंद्र जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसा हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके, जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक हर साल, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम भाग के जिंदगी में, एक चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खासतौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
0: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फ़ायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार मैंने पहले भी कहा उसको स्टिमुलेट होना चाहिए, तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगर माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का वो तो है ही, तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कई बार हमें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशअप बाय खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं, दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गाँव में करते थे, रस्सा कस्सी करते थे, थोड़ा बहुत हल्की सी

0: कुछ कुश्ती कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था. कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे. दिस आर गेम्स विच यू कैन डू. एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करना है. आप घर पर बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए, ये सब करना, दैट इज़ ऑल. आँख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आँख मिचोली थी वो बहुत बहुत अच्छा खेल था, क्योंकि उसमें उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आँख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था.
1: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से. राकेश जी, जी कहिए क्या है आपका सवाल.
2: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से. तो मैं हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चे की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है, जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल होगी.
1: जी जी जी डॉक्टर पांडे.
3: सो देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले. अब आप जो सेब की बात कर रहे हैं जो ग्रो होता है, छोटे बच्चों को इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस तो उसके गले में फंस सकते हैं. सो बहुत केयरफुल रहिए छोटे बच्चे को. जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको उसके दांत ना निकल आए, वो च्यू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है. शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने. आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं. शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो निगली जा सकें बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए. शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं. उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको. तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से.
1: जी जी, दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी. संजय जी क्या है आपका प्रश्न?
4: शिक्षित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करे, काम के बाद माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक.
1: जी जी जी जी जी, हाँ ये आपने एक अच्छे उदाहरण दिए. और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए. दोस्तों हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर ये शून्य और फिर नंबर 2331048, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं. अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044. तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं. आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट. जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का. हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए? हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही दिया जाता है आहार, यदि कहें, लेकिन शायद ये पूरक आहार के विषय में,
3: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए.
1: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
0: मुनिषे का इसमें अन्नप्राशन और
1: जी
0: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार

0: हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देना था, उसके लिए अन्न प्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
1: जी,
0: और
1: अन्न प्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
0: फेस्टिवल,
1: हमारी संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार,
0: विवाह
1: है, तो उसी तरह अन्न प्राशन सबसे पहला।
2: और एक इसमें बात और है कि अन्न प्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
1: जी जी जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर बिष्ट, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविज़न का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए, और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहें, तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं। वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्स्चर पता चल रहा है, और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता, तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना, उनको फूड फैटिज्म भी ज्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा होती है।
1: तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा, तो यूनिसेफ ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
2: तो दो चीजें हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने दो महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा, तो ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, और एक एरिया है क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
0: जैसा मनीष जी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% तक मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53

0: सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जैसे सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा, तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शन भी तभी बन रहे होते हैं
1: जी। यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं। पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आप हमें दीजिए इजाजत, मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार,
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।

0: সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। তিনি জানান, 2024 সালে হাসিনা সরকারের পতনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রায় 2 বছর ধরে দেশ পরিচালনা করেছেন। আসন্ন দুর্গাপূজার সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ দপ্তর প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ জানিয়েছেন। বিধাননগরের বিদ্যুৎ ভবনে আজ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেল, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড এবং WBSEDCL, CESC, IPCL এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুর্গাপূজার সময় রাজ্যে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় 12,000 মেগাওয়াট হবে বলে তিনি জানান। বিদ্যুৎ সরবরাহে যেকোনো সমস্যা সমাধানে 3,500 মোবাইল ভ্যান মোতায়েন করা হচ্ছে। ইউএস ওপেন টেনিস সিঙ্গলসের খেতাব জয় করেছেন জার্মানির আলেকজান্ডার জাবেরেভ। নিউ ইয়র্কে গতরাতে আমেরিকান বেন সেল্টনকে 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 সেটে হারিয়ে এই শিরোপা পেলেন তিনি। জুন মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের পর এবছর এটিই আলেকজান্ডার জাবেরেভের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খেতাব জয়। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলি যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে। সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনের জন্য ভারতের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন সদস্য দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির ব্রিক্স।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে স্যার ফিরোজি। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने भारत की सर्वसम्मति बनाने की भूमिका की सराहना की। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है।

0: कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रियासिस ने मजबूत स्वास्थ्य सहयोग, नवाचार, लचीलापन और सतत वित्तीय व्यवस्था का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने ब्रिक्स देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर पांचवे भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के करीब 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक निर्यात की स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार को हुए हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: लंदन में कल हजारों लोगों ने पहली बार टेम्स नदी की आरती की। गंगा आरती की तरह की गई आरती में शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये पारंपरिक हिंदू अनुष्ठान प्रकाश, प्रार्थना और कृतज्ञता का प्रतीक है। कार्यक्रम का आयोजन चिन्मय मिशन यूके ने टोटली टेम्स महोत्सव के सहयोग से किया। ये आयोजन संस्था की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया भर में हो रहे समारोह का हिस्सा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने न्यूजीलैंड नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल गैरिन गोल्डिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने, परिचालन सहयोग बढ़ाने और समुद्री सूचनाओं के आदान प्रदान को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। वर्ष 2027 में होने वाले दोनों देशों के पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पर भी चर्चा की गई।

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से कल मैदान में उतरेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने भारत की सर्वसम्मति बनाने की भूमिका की सराहना की। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: no boundaries. Thank you for spending these 30 beautiful minutes with us. If these songs touched you tonight, if they brought back a memory, hold on to it. This is Resonance from Yesteryears. We'll be back next week, same time, same place, with another decade, another story. Till then, take care. Goodbye. Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया